शोभा जोशी ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना समूह स्वर में सुनते हैं, जिसके रचयिता हैं गजानन कुलकर्णी, संगीतकार हैं रविंद्र खासनेस।

गजानन कुलकर्णी ने रची यह भक्ति रचना समूह स्वर में अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे रविन्द्र खासनेस। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं प्रभाकर कारेकर के स्वर में यह भक्ति रचना।

प्रभाकर कार्यकर ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे राग गुरजोड़ी तोड़ी पर ख्याल. कलाकार हैं प्रबीर बंदोपाध्याय. आपके साथ तबले पर हैं जॉयदास गुप्ता और हारमोनियम पर हैं अमिताभ भट्टाचार्य.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Gujari Todi. Our artist is Prabir Bandyopadhyay. Accompanying him on the tabla is Joydas Gupta and on the harmonium is Amitabh Bhattacharya.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुरजोड़ी तोड़ी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे प्रवीर बंदोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे राग झप ताल पर तबला वादन।

0: कलाकार हैं उज्ज्वल रॉय। आपके साथ हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग गुर्जारी टोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज प्रबीर बंदोपाध्याय। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ तबला रिसाइट। Listen to a tabla recital in Chaptal. Our artist is Ujjwal Roy. Accompanying him on the harmonium is Devashish Adhikari.

0: अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत झप ताल पर तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे उज्जवल राय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Jhaptal. Our artist was Ujjwal Roy. Accompanying him on the harmonium was Debashish Adhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। प्रारंभ में सुनते हैं राजेंद्र कांदळगावकर द्वारा प्रस्तुत राग वृंदावनी सारंग। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है चरण शरण गोपाल, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है जाऊं मैं तोते बलिहारी। साथ संगत तबला माधव मोड़क, हारमोनियम राजीव परांजपे। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कांदळगावकर द्वारा प्रस्तुत राग वृंदावनी सारंग।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे राजेंद्र कांदळगावकर द्वारा प्रस्तुत राग वृंदावनी सारंग। आपके साथ तबले पर थे माधो मोड़, हारमोनियम पर संगति कर रहे थे राजीव परांजपे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विजय सरदेशमुख द्वारा प्रस्तुत राग शुद्ध कल्याण। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है बोल न लागी, और मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है बतिया दुरावत है। सात संगत हारमोनियम प्रमोदी नामदार, तबला विठ्ठल क्षीरसागर। तो आइए सुनते हैं विजय सरदेशमुख द्वारा प्रस्तुत राग शुद्ध कल्याण।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विजय सरदेशमुख द्वारा प्रस्तुत राग शुद्ध कल्याण। आपके साथ हारमोनियम पर थे प्रमोद इनामदार, तबले पर थे विठल क्षीरसागर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है सुखमय बैनर्जी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio Delhi. We now present for you a sarod recital by Swapnamay Banerjee. Accompaniment on the tabla is provided by Sukhmay Banerjee. Listen to Rag Basant Mukhari, in which you will hear the alap followed by the vilambit and rutgat set to Tintal.

0: अभी आप स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी सुखमय बैनर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग बसंत मुखारी एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय स्वप्नमय बैनर्जी। अकॉम्पनीमेंट ऑन द तबला वॉज प्रोवाइडेड बाय सुखमय बैनर्जी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओ, यह रेडियो चैनल रागम 24 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं मिश्र वाद्य संगीत. मिश्र वाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं चेलो वादन से. कलाकार है नैन्सी कुलकर्णी. नैन्सी कुलकर्णी चेलो पर प्रस्तुत कर रही है राग जय जयवंती. आलाप जोड़ झाला और उसके बाद चौताल में गत. आपके साथ पखवाज पर संगत रहे हैं माणिक मुंडे. सुनते हैं नैन्सी कुलकर्णी का चेलो वादन राग जय जयवंती.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे नैन्सी कुलकर्णी का चेलो वादन राग धार जय जयवंती। आपके साथ पखवाज पर संगत कर रहे थे माणिक मुंडे। श्रोताओं, मिश्र वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन वादन राग मियां मल्हार। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रामदास परसुले। सुनते हैं उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन पर बजाया हुआ राग मियां मल्हार।

श्रोताओ हम सुन रहे थे उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन वादन राग था म्यामलहर। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रामदास परसुले। आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिती थी रागम। 24/7 DTH चैनल पर हृदय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम भैरव ध्रुपद, तदुपरांत जौनपुरी धमार. कलाकार हैं सुमोना गुप्ता. आपके साथ पखवास पर हैं प्रबालनाथ और हारमोनियम संगी हैं कमलाखा मुखोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DDH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Bhairav Dhrupad followed by Dhamar in Jaunpuri. Our artist is Shumona Gupto. Accompanying our artist on the Pahavaj is Prabal Nath and on the harmonium is Kamalakho Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम भैरव ध्रुपद तदुपरांत जौनपुरी धमार सुन रहे थे। कलाकार थी सुमोना गुप्ता। आपके साथ पखवास पर संगीत है प्रबाल नाथ और हारमोनियम संगीत है कमलाखा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग अहिरी पर सितार वादन। कलाकार हैं रीना श्रीवास्तव। आपके साथ तबले पर हैं अभिषेक चट्टोपाध्याय।
1: You were listening to Bhairav Dhrupad, followed by Dhamar in Jaunpuri. Our artist was Sumona Gupta. Accompanying our artist on the Pakhavaj was Prabal Nath, and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Ahiri. Our artist is Reena Srivastava.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिरी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थी रीना श्रीवास्तव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अभिषेक चट्टोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Ahiri. Our artist was Reena Srivastava. Accompanying our artist on the tabla was Abhishek Chattopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

मनरंग द्वारा राग यमन में निबद्ध इस बंदिश में रोम रोम से संगीत प्रस्फुटित होने की तीव्र आकांक्षा को अभिव्यक्ति मिली है। इससे प्रकट है कि बंदिश का निर्माण संगीतानंद के लिए है। संगीत उपयोगी भाव स्थिति का निर्माण करना ही इसका उद्देश्य है। यह भाव स्थिति बीज रूप में होती है, जिसे संगीत की भाषा में रक्ति बीज कहा जाता है। इसी रक्ति बीज से पूरी तरह पुष्पित, पल्लवित और सुफलित

बंदिश में मुखड़े का सर्वाधिक महत्व है। जिस तरह व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है, उसी प्रकार बंदिश के मुखड़े से संबंधित राग का स्वरूप प्रकट होता है।

अभी आपने राग बिहागड़ा में जो बंदिश सुनी उसमें आपने गौर किया होगा कि मुखड़े के पहले तान आती है जो एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। इसी राग में एक दूसरे स्वरूप की बंदिश सुने जिसमें सम है तार सप्तक के सहज पर और लय के भिन्न भिन्न प्रकार राग को नया रंग देते हैं।

कलाकार ने अपने सुर और अपने मिजाज के ख्याल से चयन को किया कि वो उनका गाने का जो मिजाज था वो मंदर सप्तक में था, जैसे फयाज खान साहब की अमूमन बंदिशें मंदिर में चलती है, आगरा घराने वालों की बंदिशें मंदिर में ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि उनका गाने का जो अंदाज था, कि उनका जो आवाज़ लगाव था, वो मंदिर सप्तक में उनका मिजाज था। जैसे खान साहब गुलाम अली खान साहब का मिजाज था, गुरुजी कुमार गंधर्व जी का मिजाज था, कि वो तार सप्तक में उनका

बंदिश के शब्दार्थ का कार्य किसी एक भाव स्थिति या संगीतानुकूल भूमि निर्माण करना होता है, अतः शब्दार्थ से जो भी भाव स्थिति व्यक्त होती है वह उसकी स्वरचना से होने वाली भाव स्थिति से एक रूप होनी चाहिए। अभी आपने जो बंदिश सुनी उसमें आपने अनुभव किया होगा कि स्वर और शब्द दोनों ही एक भाव स्थिति व्यक्त करते हैं। यही विशेषता थी शोक उपनाम से रचना करने वाले शिवपुत्र कोमकली की, जिन्हें हम कुमार गंधर्व के नाम से जानते हैं। शब्दों तथा लय के साथ खेलने का उनका गुण विरला था, जो राग को नया आयाम देता था। और अब प्रस्तुत है इनायत पिया द्वारा रचित राग विहार की है बंदिश, जिसमें आप राग का अलग ही स्वरूप पाएंगे।

और अब प्रस्तुत है बड़े गुलाम अली खान साहब द्वारा रचित एक बंदिश। मद्रास के श्री जी एन बी बाल सुब्रमण्यम के संसर्ग में रहते हुए खान साहब दक्षिण भारतीय राग से प्रभावित हुए और उन्हें उत्तर भारतीय राग सिद्धांत में ढालकर उन्होंने नए राग की रचना की, जिसे नाम दिया हिंदोली का सारंग।

को प्रकट करने की क्षमता रखता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ राग ऋतु विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुनिए राग मियां की मल्हार में एक बंदिश जो वर्षा ऋतु से संबंधित रचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है।

ज्यादा वाग्यकार संगीत रचनाकार आगरा घराने में हुए। आगरा घराने में सबसे नामी फनकार हुए फयाज खान साहब। उन्होंने प्रेम पिया नाम से कुछ रचनाएं गाई। उनके रिश्तेदारों में अनवर हुसैन खान साहब, रसरंग नाम से उन्होंने की। फिर दरस पिया, उनके बुजुर्ग कलाकार थे महबूब खां दरस पिया, रमजान खां रंगीले, अजमत हुसैन खां साहब दिल रंग, उनके घराने के प्रेम रंग,

यह थी राग चंद्रकोंस में गुणीदास की बंदिश। पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित गुणीदास के नाम से लिखा करते थे और उनके उस्ताद विलायत खां साहब प्राण प्रिया के नाम से। जगन्नाथ बुआ अपनी रचना में अपने गुरु का उपनाम प्राण प्रिया भी प्रयुक्त करते थे, जो अपने गुरु के प्रति उनकी असीम श्रद्धा का परिचायक है। आइए अब सुनते हैं सनत प्रिया की रचना। राग तिलक कामोद की है बंदिश, मध्य एक ताल में निबद्ध है।

जितना पुराना रागों का इतिहास है उतना ही पुराना बंदिशों का भी। आश्चर्यजनक बात है कि 100-200 वर्ष पूर्व बनाई गई बंदिशें आज उतनी ही लोकप्रिय हैं। इन कालजयी बंदिशों के रचयिता सदारंग, अदारंग, मनरंग, हररंग आदि कई श्रेष्ठ रचनाकार रहे हैं जिन्होंने अपने अमूल्य योगदान से संगीत परंपरा को समृद्ध किया है। इनमें सदारंग का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत है इन्हीं की एक बंदिश राग सुहा में,

पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का संगीत में योगदान सर्वविदित है, किंतु वे एक अच्छे बंदिशकार भी थे, यह कम ही लोग जानते हैं। वे चतुर पंडित उपनाम से बंदिशें लिखते व स्वरबद्ध करते थे। उनकी रचना क्षमता का परिचय कराती है यह बंदिश जो राग सुहा में निबद्ध है। इसमें उनके कृष्ण प्रेम की भी झलक मिलती है।

शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में मूल अंतर है काव्य और स्वर रचना की प्रमुखता का। जहां सुगम संगीत में काव्य पक्ष प्रमुख होता है और संगीत अथवा स्वर उसका अनुगमन करते हैं, राग संगीत में स्वर रचना प्रमुख होती है, शब्द उसका अनुगमन करते हैं। इसलिए बंदिश की प्रशंसा उसकी काव्यात्मकता के लिए नहीं अपितु स्वर रचना के लिए की जाती है। प्रस्तुत है राग भैरवी में विनोद पिया द्वारा रचित यह बंदिश, जो इस राग का अलग रंग दिखाती है।

जिस प्रकार ईश्वर एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार राग भी बंदिशों के माध्यम से अलग अलग रंगों में प्रकट होता है। लीजिए सुनिए भैरवी का एक और रंग बिखेरती कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल की बंदिशों पर आधारित रूपक बंदिशों का गुलदस्ता। वाचक स्वर था बीएन गोस्वामी का। गायक कलाकार थे रामदास मुंगरे, सुधाकर देवड़े, मीरावी राव। आलेख था राम वल्लभ आचार्य का। तबले पर संगत की सलीम अल्लाह।

अले और नफीस अहमद खान ने सारंगी पर थे कदीर खान, प्रस्तुत करता थे अभय फगरे। हर पल हर समय डीटीएच रागम के लिए यह थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू अ फीचर बेस्ड ऑन द कंपोजिशंस ऑफ हिंदुस्तानी ख्याल। फीचर वॉज नरेटेड बाय बीएन गोस्वामी। कंपोजिशन संग बाय मीरावी राव, रामदास मुंगरे एंड सुधाकर देवले। Script was written by Ram Vallabh Acharya. The accompaniment on the tabla was provided by Nafees Ahmed Khan and Saleem Allawale. Sarangi accompaniment was provided by Kadir Khan. Feature produced by Abhay Fagre. The program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है गुलशन भारती का उपशास्त्रीय गायन. आइए पहले सुनते हैं मिश्र काफी में ठुमरी, जिसके बोल हैं अचरा छोड़ो कन्हाई. तबले पर संगत की है अरुण कुमार भट्ट ने और हारमोनियम पर इलियास खान ने.
2: दिस इज रागम. टुडे इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर गोइंग टू प्रेजेंट लाइट क्लासिकल वोकल बाय गुलशन भारती. फर्स्ट ही इज गोइंग टू प्रेजेंट ठुमरी इन मिश्र काफी. कॉम्पोजिशन इज अचरा छोड़ो कन्हाई. अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला अरुण कुमार भट्ट एंड ऑन हारमोनियम इलियास खान.

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे मिश्र काफी में ठुमरी, और आइए अब सुनते हैं माज खमाज में दादरा, जिसके बोल हैं पिया लागी लगनिया, कलाकार हैं गुलशन भारती।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग ठुमरी इन मिश्र काफी, नाउ यू लिसन दादरा इन माज खमाज। कॉम्पोजिशन इज पिया लागी लगनिया बाई गुलशन भारती।

0: ये था माझ खमाज में दादरा। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं मिश्र भैरवी में ठुमरी, जिसके बोल हैं अलसाने नैना जागे।
1: यू आर लिसनिंग दादरा इन माज खमाज। बाय कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम नाउ वी आर प्रेजेंटिंग ठुमरी इन मिश्र भैरवी। कॉम्पोजिशन इज अलसाने नैना जागे।

0: मिश्र भैरवी में गाई ठुमरी के बाद आइए अब सुनते हैं मिश्र कालिंगड़ा में दादरा, जिसके बोल हैं बालम नैया डगा मग डोले।
1: आफ्टर ठुमरी इन मिश्र भैरवी, नाउ गुलशन भारती इज प्रेजेंटिंग दादरा इन राग कलिंगड़ा। कॉम्पोजिशन इज बालम नैया डगा मग डोले।

0: अभी आप सुन रहे थे गुलशन भारती का गाया मिश्र कालिंगड़ा में दादरा। तबले पर संगत की थी अरुण कुमार भट्ट ने और हारमोनियम पर इलियास खान ने। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।
1: यू आर लिसनिंग तुमरी एंड दादरा बाय गुलशन भारती। Accompanying him on tabla, Arun Kumar Bhatt, and on harmonium, Ilyas Khan. This is Ragam 24/7 DTH, Anytime Indian Music. This program was contributed by All India Radio, Lucknow.

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उमा गर्ग का गाया राग श्याम कल्याण. विलंबित ख्याल एकता में निबद्ध है. बोल हैं झूलत राधा प्यारी और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं बावरी भई पिया बिना. तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.

0: लीजिए अब सुनिए उमा गर्ग का गाया राग कौसी कान्हड़ा। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दिन बीत गए, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल शी नाउ प्रेजेंट्स राग कौसी कान्हड़ा। शी फर्स्ट प्रेजेंट्स विलंबित ख्याल सेट टू एक ताल। द लिरिक्स ऑफ दिस विलंबित ख्याल आर दिन बीत गए। दिस विल बी फॉलोड बाय द द्रुत ख्याल सेट टू तीन ताल। द लिरिक्स ऑफ दिस आर काहे करत मोरी बरजोरी।

0: अभी आप उमा गर्ग का गाया राग कौंसी कान्हड़ा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी अख्तर हसन ने और सारंग पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू राग कौंसी कान्हड़ा संग बाय श्रीमती उमा गर्ग। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री अख्तर हसन, ऑन द सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन द हारमोनियम बाय अशोक कुमार। This program was a presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पति भानुजी देशपांडे ने रची ये भक्ति रचना से, जिसे गाया है अनुराधा मराठे ने।

अनुराधा मराठे ने गाई प्रतिभा देशपांडे की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए समूह स्वर में सुनते हैं ये देशभक्ति पर गीत, जिसके रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत।

देशभक्ति गीत अभी आपने सुना, जिसके रचयिता हैं समित्रानंदन पंत। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना संत तुलसीदास की, जिसे गाया है आरती ठाकुर ने।

आरती ठाकुर ने गाई संत तुलसीदास की भक्ति रचना, अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संजीवनी मराठे की, जिसे गाया है जानकी अय्यर ने।

जानकी अय्यर ने गाई संजीवनी मराठे की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंद्रकांत कारिकेश्वर में संत एकनाथ की ये भक्ति रचना।

संत एकनाथ की भक्ति रचना अभी आपने सुनी चंद्रकांत काले के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत ज्ञानेश्वर की भक्ति रचना माधुरी पुरंदरी के स्वर में।

माधुरी पुरंदरे ने गाई संत ज्ञानेश्वर की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत मीरा भाई की भक्ति रचना गिरीश के स्वर में।

गिरीश ने गाई संत मीराबाई की भक्ति रचना, अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक पारंपरिक मराठी भक्ति रचना, जिसे गाया है शाहीर साबळे और सहकारियों ने।